0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो
2: टीम पॉइंट ब्लैंक म्यूजिक
3: इट्स बॉय ऑन द मशीन
2: मीपी राफेल मगेजे बास बास पापा अनदर वन.